कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना करया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे।

पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैन भरा रिश्तेदार सारे बोल कबोल बोल दे जी, जदों दा तू जन्म लिया है ते घर विच काटा ही काटा है, तुर नहीं सकदा, हथा ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खुआवेगा। रोज बोल कबोल बोल दे ने तू बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे कोलो सुनिया ना गया, हर रोज दिया गल्लां सुन के अज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। ओ प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है, मैं वाहिगुरु दा

एक महापुरुष इस बरसात विच तुरे जा रहे नहीं ते की देख रहे नहीं और सामने एक घर दिस

बेसवादा है। महापुरुष बाहर खलोते, बरसात हो रही है, सर्दी दी रुत है, कंब रहे नी, ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते नी, नस के अंदर गए, सतपुरख आए ने, सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे, बची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मा दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असां ने नहीं पीना, इन्नी गल आखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना, तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गिलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आंदे ने, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मनांगी। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे

0: खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगी तर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अधी रात का समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके, राणी वाला पलंग खाली पे है।

चौथा पाठ सारे मिलके करिए। गुरु नानक पातशाह मेहरबान सदगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेज गाउण अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो।

परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाहे खूबा हसीए मुकद्दस ला इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। ते सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तो अलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दिते सानू। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दे बारे दासां नू हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शस्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शस्त्रां नू भगवती नू खग नू नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उच्चारण करदे ने विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगं नमो खग अदंगं अपेंग अपंगं गदांग ग्रिष्टम नहो समो सहथियंग जिने तुलियंग वीर दियो ना दियो। ते सतगुरु पातशाह जी दे आओ शस्त्रनामा बड़े प्यार नाल श्रवण करो। ये राग जो आप जी श्रवण कर लगे हो कोशिश करांगे राग ये जिस तरह के आप जी सारे जानते हो पंथ प्रसिद्ध जथा सत्कार योग अति सत्कार योग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी गुरबाग सिंह जी जो पंथ के रतन हैं पंथ के हीरे ने तो सतसंग जी वह भी बैठे ने तो अमरीत सिंह जी जख्मी साहब जी कीर्तन करके गए ने। तो आओ ये राग जो आप जी के सन्मुख रखन लगे हैं ये राग जिस तरह के औडव जाति छाडव जाति संपूर्ण जाति तीन जातियां दे राग मने जाते हैं पर चतस्वरी जाति चार सुर दा राग है। इसका नाम भवानी राग है मां ते सा इसका वादी है बिलावल थाड़ दा ये राग है। तो आओ बड़े प्यार दे गा पा नी ये वर्जित करके ये चार

तिन कब जाबी आइस मोदिया। तो दशमेश पिता जी फरमाते ने कि जदों मैनू हुक्म होया उस अकाल पुरख का तिन कब जब आइस मोदिया तब हम जन्म कलू वे लिया।

ब्रह्मा न जाने भेद, ब्रह्मा न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर

0: अनेक रूप होए प्रगटिया
1: वाह अनेक रूप होए प्रगटिया
0: केड़े केड़े रूपां च आए आप